दोस्तों, ऐसी आवाज एक बहुत ही खूबसूरत कलाकार एमी विर्क दी। एमी विर्क ऐसा कलाकार है जो मुढ़ तो ही पंजाबी दे नाल, पंजाबीयत दे नाल मोढ़े नाल मोढ़ा जोड़ के खड़ा है। जदों भी पंजाब ते कदे हड़ां दी जां होर तो झक्खड़ां झोरियां दी मार पई है, तां इहो जे कलाकार जिहड़े अपनी किरत कमाई चों इक वड्डा हिस्सा पंजाब दी मदद लई दान दिंदे ने, तां हुण फर्ज़ है अपना भी। एमी विर्क जो बहुत ही खूबसूरत शख्सियत दा मालक भी है, वो आए ने जी ठोडे शहर टोरंटो दे विच 30 अगस्त नूं। उन्हां दा लाइव शो जिहड़ा वा वो होण जा रहा है द थिएटर एट ग्रेट कनेडियन टोरंटो दे विच। ते जे तुसीं हले तक टिकटां नहीं लईयां तां मैं तां यही कहूँगा भी ticketmaster.com ते जाओ ते अपनियां अपनियां टिकटां बुक कर लो, क्योंकि जिहड़ियां टिकटां ने वो बहुत तेजी नाल सोल्ड आउट हो रही ने।

ब्यूटी इंडस्ट्री दी दुनिया विच अपना करियर बनाउन बारे सोच रहे हो ता हो जाओ टेंशन फ्री अमायरा एकेडमी हेयर एंड एस्थेटिक्स तुहाडे ऐसे करियर ते ड्रीम्स नु दिखाउन के सही राह जो प्रोवाइड करदे हन सब तो बेहतरीन ते कंप्लीट कोर्स पैकेज पूरे कैनेडा विच हेयर स्टाइलिंग डिप्लोमा मेडिकल एस्थेटिक डिप्लोमा ए सब दे नाल नाल अमायरा एकेडमी अपने यूनिक ते सुपर सैटिस्फाइंग हेयर सर्विसेज एंड स्पा ले वी जाने जाते हन हुणे कॉल करो 9053996110 ते और विजिट 114 कैनेडी रोड यूनिट 2 ब्रैम्पटन ओंटारियो ब्रैम्पटन विच जे तुसी लभ रहे हो बेस्ट क्वालिटी ते इंपोर्टेड प्रोडक्ट्स ता फिर तुहाडी टेंशन हुन छूमंतर हो जावेगी आओ ब्रैम्पटन कैश एंड कैरी ते जिथे मिलदे ने फ्रेश वेजिटेबल स्पाइसेस स्नैक्स ग्रोसरीज ते किचन आइटम्स सब इको थां ते एंड माइंड ब्लोइंग वैरायटी नाल तुहानू लगु शॉपिंग दा मजा असली पंजाब वर्गा याद रखो 100 कैनेडी रोड साउथ ब्रैम्पटन या फिर कॉन्टेक्ट कर सकते हो 9052304800 ते या ईमेल करो brampton cash and carry2023@gmail.com ते स्वाद दे मामले विच कॉम्प्रोमाइज कदे भी नहीं करना चाहिदा इसे लिए तुहाडे लिए है विलेज ऑफ इंडिया रेस्टोरेंट एंड स्वीट्स 1999 तो लेके ब्रैम्पटन नू सर्व कर रहे हन विलेज ऑफ इंडिया रेस्टोरेंट एंड स्वीट्स लुत्फ उठाओ स्वादिष्ट पंजाबी खाने दा बुफे डाइन इन टेक आउट केटरिंग लंच दे डिनर सारा कुछ है स्वीट्स दे स्नैक्स दी वड्डी कलेक्शन भी है जो कि तुहानू जरूर पसंद आएगी ते फिर देर किस गल दी अज ही कॉल करो 905-450-3333 ते एड्रेस विलेज ऑफ इंडिया 114 कैनेडी रोड साउथ Brampton.

बोली है मावां वर्गी ठंडियां मिठियां छावां वर्गी, मां बोली है मावां वर्गी ठंडियां मिठियां छावां वर्गी, बाल पुने दे चावां वर्गी ते सज्जन दियां खुलियां बावां वर्गी, खुलियां डुलियां थावां वर्गी मेरे पिंड नूं जांदे रावां वर्गी। आओ इस दी शान वधाइए इहदे सोले रल मिल गाइए, क्योंकि बोली ना रही तां कवितावां रुल जाणियां, मावां दियां लोरियां दवावां रुल जाणियां, एडे महंगे मुल वाली चीज ना गवा दियो, वेखे पंजाबी ना भुला दियो, वेखे

नहीं करनी पाएगी। किसी भी किस्म की कोई भी समस्या है, किसी भी कंपनी की कोई गड्डी है, तुहानू वधिया सर्विस लैण दी नाम याद रखो, नैशनल आटो सर्विस 905-450-3300 कैंडी रोड साउथ। अमायरा अकैडमी ब्यूटी की दुनिया दे विच जाणिया पहचाणिया नाम। बीबियां भैणां ने कोई हेयरस का ट्रीटमेंट लेना होवे या ब्यूटी का कोई ट्रीटमेंट लेना होवे या इस फील्ड दे विच कोई कैरियर बनाउण दे लई डिप्लोमा करना, हेयर स्टाइलिंग डिप्लोमा, मैडिकल अस्थैटिक डिप्लोमा या कोई होर एडवांस डिप्लोमा, तुसी किसी किस्म की जानकारी लई फोन करो 905-399-810-905-399-6110। अमायरा अकैडमी हेयर एंड अस्थैटिक्स। गलबात साड़ी चल रही है कि उम्र नू लंबी करन दे केड़े केड़े पांच पॉइंट जेड़े सर्वे होया, उस सर्वे दे विच कॉमन पॉइंट जेड़े सारयां दे मिले है ना, ते उन्हां दी असी डिस्कशन कर रहे सी। चार पॉइंट असी डिस्कस कीते सी, पहला तुरना फिरना वाक, दूसरा संपर्क वधाउणा अपना दोस्तां मित्रां भैण भरावां रिश्तेदारां दे नाल, इन टच रहना, संपर्क च रहना बहुत जरूरी है। आइसोलेशन जिहड़ी है ना वह आदमी दे लई बड़ी घातक हुंदी है, इकल्लापन जिहड़ा आदमी दे लई बड़ा घातक हुंदा है, नुकसानदायक हुंदा है। इसलिए दोस्तां मित्रां भैण भरावां नेचर दे संपर्क दे विच रहना, उहनां दे नाल कनैक्शन बनाउणा, यह उम्र नूं लंबी करन दा बहुत वधिया एक उपराला है, साधन। फॉरगिव माफ करना, मन दे विच जो रंजश है, जो गिले है, जो शिकवे है, जो पहलां दी उम्र दे असी पाल रखे है, जो जो साडे नाल कुछ वापरिया है, सारिया दोस्तां मित्रां भैण भरावां नूं माफ कर दिओ। किसी ने तुहाडे नाल कोई वधीकी कीती है, किसी ने तुहाडा कुछ मारिया है, किसी ने तुहाडे नाल कोई फरेब कीता है, जो जो कुछ कीता है ना, इस स्टेज ते आ उहनूं सब कुछ माफ कर देना चाहिए है। यार कोई गल नहीं, जो हो गया सो बीत गया, उहदे ते मिट्टी पाओ। नैक्सट पॉइंट हैगा सी शेयर करना, अपने सुख नूं अपने दुख नूं दोस्तां मित्रां दे नाल शेयर जरूर करो यार। हाँ ऐ नहीं मैं कह रहा कि अपने घर दे सीक्रेट जिहड़े सीक्रेट शेयर नहीं करने चाहिए, लेकिन अपने सुख दुख जिहड़े है ना, रोजमर्रा जिंदगी दी जिहड़ियां छोटियां छोटियां प्रॉब्लम जिहड़ियां खुशियां जिहड़ियां, वह दोस्तां मित्रां दे नाल जरूर शेयर करते रहना सानू चाहिए। लास्ट जिहड़ा एक पॉइंट हैगा ना, वह हैगा थैंक्स, शुक्रिया अदा करना। ये तो गुरबाणी दे विच भी लिखे है ना कि सुख वेले शुकराना, दुख वेले अरदास, हर वेले सिमरन। सब तो पहला पॉइंट है शुकराना करना, जो कुछ भी उस परमात्मा ने सानू बख्शिया ना, जो कुछ भी उसने सानू दिता है, उस दे दित्ते दे विच अपने आप नू असी सबर करिए, संतोख करिए और उस परमात्मा का शुक्र करिए, उदा थैंक्स करिए कि जो भी उसने सानू कुछ दिता है ना, गिला शिकवा ना करिए। हो सकता है जो जो कुछ उसने तुहानू दिता है ना, बहुत सारे लोगों का वह सपना होए कि यार उहदे कोल जो कुछ है ना, काश मैनू मिल जाए। सो अपने तो उच्चियां वल देख के जिंदगी कदे भी नहीं ज्योई जाती, हमेशा अपने तो नीवियां वल देख के जिंदगी ज्यो कि यार देखो उन्हां कोले ते ऐ भी कुछ नहीं है, मेरे कोल है। जे तुसीं इस तरह के मन की सोच बना लोगे ना, तो फिर तुहानू जिंदगी दे विच सुकून मिलेगा, जिंदगी दे विच सुकून मिलना ना जिहड़ा, इह उम्र नूं लंबी करन दा इह वी इक सब तो वड्डा इक फंडा कह सकदे हो, नजरिया कह सकदे हो, सोर्स कह सकदे हो। सो इह जिहड़े पंज पॉइंट आ ना, मैनूं ते मैं अज पढ़िया ना, ते मैं अज सोचिया कि दोस्तां दे नाल जरूर शेयर करूंगा। दोस्तां मित्रां नूं बड़ा राहत मिलेगी इन्हां चीज़ां तों कि बहुत सारे मेरे दोस्त मित्र जिहड़े सीनियर सिटीजन बन गए ने, सो उहनां नूं जरूर इन्हां चीज़ां नूं अपने मन दे विच रखना चाहीदा है कि जिन्ना क चल फिर सकते ने सैर सुर करनी चाहिए है, दोस्तों मित्रों के संपर्क में रहना चाहिए, भैणा भरावां के संपर्क में रहना चाहिए, फोन फून एक दूसरे नूं कर लिया करो, कोशिश करिया करो दसी भी पंद्रह दिन महीने बाद उन्होंने मिलिया भी जाए ना किसी सबब के नाल, तो वह भी सब तो वधिया तरीका है। फॉरगिव कर दो जो पास्ट दे विच जो जो किसी ने तुहाडे नाल कोई वधीकी की, जो जो उच्चा नीवा बोलिया, माफ कर दो उसनू, कोई फर्क नहीं पैंदा इहदे नाल। शेयर करो सुख दुख दोस्तों मित्रां दे नाल शेयर करते रहना चाहिए। थैंक्स करो जो कुछ है, उहदे विच अपने आप नूं संतुष्ट समझो और ओ परमात्मा दा थैंक्स करो कि उसने जिन्ना तुहानूं दित्ता है ना, ओ उसकी रजा सी, जिथे उसने तुहानूं रख्या होया जेकर अपने आप नूं उत्थे रखोगे ना, तो मेरा ख्याल है तुहाडा मानसिक तौर पर भी तुसीं तंदुरुस्त होवोगे। सो जदों मानसिक तौर पर तुसीं तंदुरुस्त हो तो शरीरक तौर पर अपने आप ही तंदुरुस्त तुसीं रहोगे। जिदा कहा जाए भी हैल्दी माइंड इन ए हैल्दी बॉडी, जे तुहाडा माइंड
ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਬਾਡੀ ਹੈਲਦੀ ਹੈ, ਸਰੀਰਕ ਤੌਰ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਤੰਦਰੁਸਤ ਹੋ, ਤੇ ਮਾਈਂਡ ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਤੰਦਰੁਸਤ ਰਹੇਗਾ। ਸੋ ਟਾਈਮ ਦੀ ਸਾਡੀ ਸਮਾਪਤੀ ਹੋ ਚੱਲੀ ਹੈ ਅੱਜ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੀ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਕੱਲ ਮਿਲਾਂਗੇ ਫਰਾਈਡੇ। ਫਰਾਈਡੇ ਨੂੰ ਬੜਾ ਹਲਕਾ ਫੁਲਕਾ ਦਿਨ ਹੁੰਦਾ, ਤੁਹਾਡੀ ਫਰਮਾਇਸ਼ ਹੋਏਗੀ, ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਛੋਟੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਹਲਕੀਆਂ ਫੁਲਕੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਕੁਝ ਕੋਈ ਗੈਰ ਗੰਭੀਰ ਕੋਈ ਔਖਾ ਵਿਸ਼ਾ ਆਪਾਂ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ। ਕੱਲ ਰੱਖੜੀ ਦਾ ਵੀ ਤਿਉਹਾਰ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਮਨਾਓ। ਭੈਣਾਂ ਭਰਾਵਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਤਿਉਹਾਰ, ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੈਲੀਬ੍ਰੇਟ ਕਰੋ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਪਵਿੱਤਰ ਤਿਉਹਾਰ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਮੁਬਾਰਕਾਂ। ਸਾਰੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਦੇ ਭਰਾ ਜਿਹੜੇ ਬਿਲਕੁਲ ਨੌਬਰ ਨਾ ਰਹਿਣ, ਤੰਦਰੁਸਤ ਰਹਿਣ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਜੌਬਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਵਧੀਆ ਰਹਿਣ। ਅਤੇ ਕੱਲ੍ਹ ਆਪਾਂ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ 'ਤੇ ਥੋੜ੍ਹੀ ਬਹੁਤ ਗੱਲ ਵੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਫਰਮਾਇਸ਼ ਦੇ ਗਾਣੇ ਗੁਣੇ ਵੀ ਚਲਾਵਾਂਗੇ। ਬਾਕੀ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੀ, ਆਪਣੇ ਕਿਸੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦੀ, ਕਿਸੇ ਕਿੱਤੇ ਦੀ, ਕਿਸੇ ਸਕਿੱਲ ਦੀ ਕੋਈ ਐਡ ਤੁਸੀਂ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਹੈਲਪ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਡ ਕਰਕੇ ਬੜੇ ਹਲਕੇ ਜਿਹੇ ਪੈਕੇਜ 'ਤੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਹੈਲਪ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। 647-367-5353 'ਤੇ ਵੀ ਸੰਪਰਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਔਰ 437-243-3091 ਮੇਰਾ ਪਰਸਨਲ ਨੰਬਰ ਹੈ, ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸੰਪਰਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਮਿਲਾਂਗੇ ਕੱਲ੍ਹ ਹਲਕੀਆਂ ਫੁਲਕੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਵੀਕਐਂਡ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਫਰਾਈਡੇ ਨੂੰ। ਤਦ ਤੱਕ ਦੇ ਲਈ ਖੁਸ਼ ਰਹੋ, ਆਬਾਦ ਰਹੋ ਅਤੇ ਜ਼ਿੰਦਾ ਰਹੋ।

0: This is AM 530, CHLO AM, serving Brampton, Mississauga, Toronto, the GTA, and the world at am530.ca. The opinions expressed in the following program are those of the host and their guests and do not reflect the views and opinions of the management and staff of CHLO AM 530.
1: पंजाब ते अमीर विरसे दी पुट्टल चो यादा ते संतुरी सफर दा हम सफर सांझा विरसा
2: गीत संगीत देश दुनिया दियां ताजा तरीन जानकारियां नाल लबरेज महकां दी सौगात वंडदा सांझा विरसा
1: सोमवार तो शुक्रवार 5:30 AM ते सवेरे 4 बजे तो 5 बजे तक
3: बिजनेस दे प्रचार ते प्रसार लई संपर्क करो
2: सांझा विरसा दी टीम नू 647-835-5294
4: वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह अमृत वेले दा जागना जे कोई जागे नित एक वधेंदी आरजू दूजा साहिबा वे चित दे महावाक अनुसार सारे ही नगर निवासियां नू बेनती कीती जांदी है भाई अमृत वेला हो गया 4 बज गए उठो इशनान पानी करो गुरु घर च हाजरियां लवाओ ते गुरु दे जस गाओ वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह।

0: रेडी फॉर दिस।
1: पर हुन थोनू कार लेन ली रेडी करेंगे। मॉर्गेज विकिंग गिरीश शर्मा।
2: रेजिडेंशियल, कमर्शियल, रीफाइनेंसिंग, डेट कंसोलिडेशन, सेकंड थर्ड मॉर्गेजेस, प्राइवेट फंड्स।
1: सब ले याद रखो गिरीश शर्मा। प्री अप्रूवल ही नहीं क्लोजिंग तक देंगे पूरा साथ। डीलिंग विद ऑल बैंक।
2: कॉल 6476068110
1: और विजिट sharmamortgages.com।
3: ट्रक एक्सीडेंट ते रब ने हाथ दे के बचा लिया
4: ते कार दे खर्चिया नु हरजीत जंजुआ दी डिसेबिलिटी इंश्योरेंस ने संभालिया। अपने भविष्य नु सुरक्षा करन ते प्रेजेंट दे पीस ऑफ माइंड ली आज ही संपर्क करो हरजीत सिंह जंजुआ।
5: हर तरह दी वधिया इंश्योरेंस पॉलिसी ले याद रखो इंश्योरेंस स्पेशलिस्ट हरजीत जंजुआ दा नाम। लाइफ इंश्योरेंस, डिसेबिलिटी, क्रिटिकल इंश्योरेंस, सुपर वीजा इंश्योरेंस, विजिटर इंश्योरेंस, हेल्थ इंश्योरेंस, किड्स प्लान, RRSP, RESP, TFSA। कॉल करो
6: 6475 5294 6478 5294।
7: कनेडा प्योर पंजाबी खानिया आते स्वीट्स लई मशहूर प्योर पंजाबी स्वीट्स एंड रेस्टोरेंट।
8: डाइनिंग, टेकआउट, केटरिंग, लाइव ट्रक ले आके थोड़ी कार केटरिंग की सर्विसेज दें देने।
7: वेज नॉन वेज केटरिंग, ताजिया स्वादलिया मिठाइयां ते जायकेदार खाने लई इको एक नाम प्योर पंजाबी। सांझा विरसा रेडियो दा रेफरेंस देन ते पाओ 10% डिस्काउंट।
8: आज ही विजिट करो 4025 ब्रेंडन गेट ड्राइव मिसिसागा प्योर पंजाबी 6473381972। कॉल करो गुरजीत रंधावा नु 6473389172।
9: शादी दी मूवी बनवाने ली या रिंग सेरेमनी ली, वेडिंग एनिवर्सरी, जागो, प्री वेडिंग, बर्थडे और एनी इवेंट दी वधिया वीडियोग्राफी ते फोटोग्राफ शूट करन ली, याद रखो देसी सिनेमैटिक फिल्म अपने हाई एंड इक्विपमेंट्स ते क्रिएटिव आइडियाज दे नाल बेस्ट रिजल्ट प्रोवाइड कर देने। बुकिंग ले आज ही कॉल करो जगदीश सिंह नु 416-930-1251 4169301251।

0: Center Drive, Brampton. Major intersection, Steels and Kennedy, 9054512600. Hello, bro. Kithe hai tu?
1: Main client nu milan ja rahe hain. Soch rahe si Tim Hortons te baith jaiye.
0: Oh, yaar. Ye ta old school ho gaya. Hun ta client meetings classy honiyan chahidiya ne. Nazara restaurant leke jao na nu. Private booths ne full privacy mil diye. Free Wi-Fi te luxury ambience. Business meeting bhi set ho jandi hai. Te khana bhi bahut vadiya.
1: ओहो, ये तो प्रॉपर प्रोफेशनल मीटिंग हो गई।
0: नजारा रेस्टोरेंट 30 रैम्बलर ड्राइव ब्रैम्पटन मेजर इंटरसेक्शन स्टील्स एंड कैनेडी कोई कॉल करो 9054512600 9054512600
2: 50 कैटरिंग कराओ तवा किचन तो थैंक यू सो मच
3: तवा किचन 50 सनीवेल गेट ब्रैम्पटन माउंटनेश एंड बवेड़ा इंटरसेक्शन या विजिट करो www.tawakitchen.ca 905-790-1699 TAWAKitchen.ca
4: पापा पापा सुनते क्यों नहीं चॉकलेट लेनी है
5: अजी सुनते हो कहाँ गुम हो
6: अरे महेश अभी तक ऑफिस नहीं आए पता नहीं मीटिंग थी हेलो हेलो हेलो
7: जब मैं रेडियो आवाज सुनता हूँ तब तो मैं अपने आप की भी नहीं सुनता बम टू बम ट्रैफिक एंड बम टू बम कॉल्स ऐसा ही होता है जब आप सुनते हैं हर सुबह 9 to 10 मंडे टू फ्राइडे एंड सैटरडे 11 to 1 रेडियो आवाज

आज खूबसूरत सुबह, खूबसूरत लोग, खूबसूरत बल्कंसिया। चलो डिजिटल एएम फ्रीक्वेंसी रही टोरंटो पेंसिल्वेनिया न्यूयॉर्क वाशिंगटन न्यूजर्सी तक सुन रहे हो। आप सब का हार्दिक स्वागत करते हैं। उम्मीद दिन खुशगवार चढ़ती कला वाला निरभाव निर्वैर के नाल नाल असीं हमेशा कहने हुंदे कि रोशनी रस्ते दिखावेगी, तुसीं चलते रहोगे। यानी कि नवीं चीज़ा जिंदगी आउंदियां रहणगियां, उन्हां नूं एक्सैप्ट करते रहोंगे। दुख और सुख दोनों दे विच जो अवस्था ही हो जाऊगी कि आनंद पाया मेरी माए सतगुर मैं पाया, तकलीफा दुख बहुत कुछ जो आस पास है वह खत्म हो जाता। खत्म किदा हुंदा? आनंद की अवस्था ही ऐसी है कि आनंद तो चरखड़ियाँ भी आया, शहादतों पर भी आया, जन्म मरम के दुखों चो कटे जाने के विचों भी आया। तो आनंद की अवस्था च बाबा दीप सिंह भी रहे, आनंद की अवस्था च मरजीवड़े शहीद सिंह जिन्हें धर्म हित सी जत्ते बंद बंद कटवाए, खोपरियाँ लहाइया, चरखड़ियाँ ते चढ़े, आरियां ना तन चरवाए, बंद बंद कटवाए, मावां ने बच्चों खुशी खुशी आनंद की अवस्था च झूलिया च पाया। तो हमेशा मैं सब तो वड्डी गल कहना हुंना, देख के अणडिठ कीता, देख लेना किसी चीज़ नूं, फिर उन्होंने अणडिठ कर देना भी मैं तो देखिया ही नहीं है, मेरा बच्चा मेरे सामने मार दिता औरंगजेब के सिपाहियों ने, तो हुण उहदे टुकड़े टुकड़े करके मेरी झोली उड़ा के मेरी झोली च पा रहे ने तां जो मैं अंतम संस्कार कर सकां। ये माहौल रहे ने, ये इतिहास नहीं है कि 4000 साल पहला फलाना आया सी, उन्हें फलाने नूं ऐ मारता सी। गल दा बतंगड़ नहीं है, इतिहास है कि थोड़ी चौथी या पंजवीं पीढ़ी उन्हां दे विच्चों हो सकती है जिहड़े शहादतां पा गए। सो अज इस शो दे विच इक वार फिर तो चढ़दी कला, चढ़दी कला मतलब चढ़दी कला, चढ़दी कला, कोई डर नहीं, कोई भाव नहीं है, चढ़दी कला, नानक नाम, चढ़दी कला तेरे भाणे सरबत दा भला।

0: वेरी गुड संतोष, दो दो दो चीजां छोटी छोटियां जिहड़ियां मैं शुरू च कीतियां सी, एक तां मोहन भगवत दी एक खबर चल रही है उहदे ते कॉन्ट्रोवर्सी चल रही है कि उहनूं वीजा दित्ता जावे कि नहीं, बहुत सारे मैंबर पार्लीमेंट्स ने उन्होंने कहा कैनेडा का माहौल खराब कर जाणगे
1: जी,
0: बिल्कुल भई इन्हां ने उत्थे जो कुछ कर रहे ने इत्थे हो करके जाणगे, इन्हां नूं वीजा ना दित्ता जावे। कई मैंबर पार्लीमेंट्स ने मोहन भगवत दे लई चिट्ठी लिखी है सरकार नूं, सरकार हुण दुविधा च फस गई है कि की करिए। तो यह हुंदा आया बहुत सारे लोगों ने, कल इंडिया च मोहन भगवत ना नहीं हो रहा, बहुत सारिया कंट्रीज तो बहुत सारे लोग इत्थे आउंदे ने, तो उन्होंने लिए इस तरह के लैटर तो इस तरह की गलबात उठती रहती है, चाहे श्रीलंका हैगा, चाहे वह मिडल ईस्ट तो कोई आता, चाहे इंडिया तो आता, कई बार पाकिस्तान तो भी रौला पिया होगा। चलो एक खबर हैगी है। दूसरे पासे जिहड़ी मेरे दिल नूं टुंग गई एक खबर आ कि ऐ मेरे वतन के लोगो जरा आँख में भर लो पानी, जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी, किस तरह कुर्बान हुए उनके। आ जो घटिया जहा इंसान परले पासे बैठा हंकारी इंसान जिसका हंकार टुट गया, हुणे बहाने बनाउण लग गए, जिहड़ा लैविट लुविट जहा जिहड़ा हैगा, मैनूं तां नाम भी नहीं लैविटिक पता नहीं की है नाम, वट एवर, मैं तां नाम भी लैणा पसंद नहीं करदा हिजे दा। वो कहता कि जी दो टायर वाले जगह पर चार टायर वाले ट्रक बनाने लिए लास्ट मोमेंट इन्होंने कहता, फिर असी डील च रौला पा लिया। छोटी छोटी गल्लां टायरों नाल फोर्ड दे ट्रकां दी गल करता सी कि डील तां डिस्ट्रॉय होगी, कैनेडा ने करती, एंड च उन्होंने पाता कि चार ट्रक वाले टायर भी इत्थे ही बनणगे, चार टायर वाले ट्रक भी इत्थे ही बनणगे, माफ़ी चाहुंदा मैं। तो ये नॉनसेंस या स्टेटमेंट्स जिहड़ियां देणियां, एक पासे इन्हां दे गुरु वल्लों कहना लेक दा नाम चेंज हो गया कल तो परसों तो ऐ कर देंगे, एक प्रेजीडेंट बच्चे दे रूप च बैठा तो बदले लै रहा लोगों तो, मिसयूज ऑफ पावर है जिहड़ी वो हो रही है, मिसयूज ऑफ पावर सही है एग्जैक्टली। तो उधर ये पिछे ना एक जिहड़े स्टोर होंदे ने पुराना समान बेचदे लोगों का, थैफ्ट स्टोर के उत्ते ना एक एक शर्ट आई अलबर्टा तो, ये शर्ट सीगी कैप्टन कोल ब्रिटाश, कैप्टन कोल ब्रिटाश जिहड़ा कि जाण लग्या एक परची रख के गया सी अपनी कमीज च पा के कि अज मैं इस तरह के हथियार लैके इह जे मिशन ते चलिया, शायद मैं बैकनामा मैनू याद रखियो हमेशा, ये चिट्ठी लिख के अपनी कमीज दे विच पा गया, जिहड़ी कि उहदे शहादत तो बाद कैनेडा पहुँची ते उहदे घरे पहुँची, उहदे घरदिआं ने उहदे कपड़े जिवें आपां दे दिंदे हुंदे गाहां वी रखदे नहीं घर च, उहदे कपड़े गाहां देते, ये कपड़े यूज्ड कपड़िआं च विकण लई आ गए, ते बैरी दे इक स्टोर दे उत्ते जदों इहदी जेब चैक कीती गई उहदे विच चिट्ठी हथ नाल लिखी हुई मिली कि रिमैंबर मी, अज मैं जा रहा, तो मतलब मैं मुड़के नहीं आना है जिते मैं जा रहा मिशन से, मैनू हमेशा याद रखियो, लिख के अपनी परची अपने घरदिआं नूं विच पा के गया, उहदी फोटो ते उहदी परची उहदी जेब दे विचों निकली। बड़ी भावुकता वाली गल है कि साढ़े सोल्जर्स अमेरिका के पिछे जाके जाना शहादत दे गए अपनियां, एड्डी पुराना रिश्ता अमेरिका ते कैनेडा दा, एक घटिया इंसान ने आके अमेरिका ते कैनेडा दे लोगों च नफरत फैलाई हुई है इस वेले, इस नफरत नूं असीं नहीं बाय करांगे। अमेरिका च जिन्हें भी तुसीं सानूं सुणदे पए हो, तुसीं सानूं बहुत प्यारे हो, और दुनिया च असीं जदों कितें घूमण जांदे आ ना जां कितें मिलण जांदे आ किसी नूं, असीं कहिंदे वी आर ब्रदर्स, असीं भरा हैगे आ दोनों अमेरिका ते कैनेडा, वी सल्यूट यू कि तुसीं इस तरह के हंकारी आदमी के सामने बोलते हो। इंडिया च तां लोकां दी हिम्मत भी नहीं बोलण दी किसी की, तुसीं बोलदे हो, तुसीं खड़ जांदे हो, तुसीं अड़ जांदे हो, वी सल्यूट यू ऑल, ते तुसीं साडा प्यार करदे हो, साडे लई सत्कार रखदे हो, ये ट्रेड डील नहीं हैगी, ये मेरे अंदर की आवाज़ आ अमेरिका और कैनेडा के रिलेशन के उपर, असी अपने रिलेशन तुहाडा कदे भी खराब नहीं करांगे, तुसीं कोशिश करियो खराब हुए रिलेशनस ने जोड़े उन्होंने सुधार लियो। और ये आदमी चलिया जाना, इन्हें जड़े कैनेडी के नाम के उत्ते म्यूजियम बनया उत्थे अपना नाँ रखता, उत्थे बगाने पुतों उत्ते चढ़ के झंडे पाड़े, कोर्ट चो जाके नाँ दुबारा चेंज कराया, सुप्रीम कोर्ट च खिंच लिया इनू, तो हजे भी जस्टिस सिस्टम अमेरिका च जिउंदा, तो जजेस ने बिना परवाह किए इस जिद्दी आदमी दे इहदा नाँ चक दिता, आ नाँ नूं जे तां जिदणे गया उदणे चक्के जाणे अगले दिन सवेरे। तो याद रखियो नवंबर च तुहाडे इलैक्शन ने, हुण अमेरिका नूं होर मरन ना दिओ, अमेरिका मर रहा इस वेले रोज़ रोज़, वड्डा दरख्त है मेरी दादी कहिंदी सी जदों गिरदा हुंदा हौली हौली जड़ां धरती चों निकलदियां ने, धरती चों जड़ां निकल रही तुहाडियां, सांभो इन्हां जड़ां नूं, कैनेडा तुहाडे नाल खड़ा, ते वी लव यू ऑल। संतोष जी की हाल चाल ने?
1: बहुत वधिया अमन जी, तुसीं दसो, एंड सानूं पता 101% की तुहाडियां रिपोर्ट बिल्कुल सही है डॉक्टर, वैसे ही तुहानूं मिलना चाहुंदे,
0: वैसे डॉक्टर ने कहा अर्जेंटा फटाफट आ जाओ,
1: मिलदे नहीं हो ना अमन जी।
0: अच्छा चलो छोड़ो, ते आपां गल नहीं करी, मैं तां लोकां नूं पॉजिटिविटी देण नूं कहा सीगा,
1: बिल्कुल
0: हां, विचार दी कला च रह करो, थोड़ी सेहतां ठीक ने, थोड़ा रोटी चली जांदी है
1: 100%
0: जी, भी एवें आपां

0: गाओ ना गीता, अब तो गाना आता है तुम्हें?
1: मुझे नहीं आता।
2: नहीं मिलो भैया, आजकल तो गीता दीदी खूब गाती है।
0: हाँ हाँ गाइए ना।

0: पर ही लगता 30 से 90 दिन आपके खाते में पैसे आ जाते हैं, और 2.5 साल बाद भी ब्याज सिर्फ 2.5% है पूरे साल का, महीने का नहीं, मतलब $1,00,000 पे सिर्फ महीने का ब्याज $200। और किससे 2.5 साल बाद स्टार्ट है बताइए, कौन सा लोन है जो आज लोग किससे 2.5 साल बाद स्टार्ट है बताइए।
1: अच्छा, इसमें एलिजिबिलिटी कैसे बनती है, कौन कौन एलिजिबल है?
0: हाँ जी, यहाँ पे ना गवर्नमेंट फंडिंग कर रही है, तो इसलिए आप पीआर हैं, सिटीजन है, प्रोटेक्टेड पर्सन, आप सिर्फ तभी एलिजिबल है इस चीज के लिए, और फंडिंग आपके खाते में आती है, कोई एज लिमिट नहीं है इसके अंदर, आप पेंशन पे हैं, हाउस वाइफ है, सेल्फ एम्प्लॉयड है, अनएम्प्लॉयड है, ऊबर ड्राइवर है, सब एलिजिबल है। 0% पे लोन लीजिए, कोई नकली कागज नहीं लगता, कोई सेटिंग नहीं है, कोई कमीशन नहीं है, कोई अप्रोच नहीं है, साफ काम है, 8 साल से साफ तरीके से कर रहे हैं, प्रॉपर ऑफिस है, 6 बंदे आपके लिए काम कर रहे हैं।
1: क्रेडिट चेक होता है इसमें?
0: ये एक लौता लोन है जो बिना क्रेडिट चेक के, बिना गारंटी के, अगर आपका क्रेडिट स्कोर -2 भी है तो भी आप एलिजिबल है इसके लिए, क्रेडिट चेक होता ही नहीं है इसके अंदर गवर्नमेंट से।
1: ठीक है, और इसमें एक ये भी बताएं, जब कोर्स कर रहे हैं उस टाइम तो इंटरेस्ट नहीं लगता?
0: सही कहा आपने, ऐसा 2 साल का कोर्स है तो आप उस पैसे को यूज कर रहे हैं, कहीं भी लगा रहे हैं, 0% ब्याज है, कहीं भी खर्च कर रहे हैं 0%। 2.5 साल बाद, मतलब कोर्स खत्म होने के 6 महीने के बाद ब्याज लगता है 1% साल का, 15 साल की आसान सी किस्तें बनती हैं, आप उसको पे ऑफ कर देते हैं। तो ऐसा लोन आप इस लोन से और लोन भी उतार सकते हैं अपने, तो बड़ी अच्छी चीज है, ये नहीं कि मैं आपको पे करूं, मैंने खुद भी यूज करा है, तो कोई चलाकी नहीं, कोई मीठी बातें नहीं है, साफ काम साफ तरीके से कर रहे हैं, रीफाइनेंसिंग जैसे और चक्करों में कमीशन मोटी देके औरों को भी ना बनाए, अपना ख्याल रखें, कॉल करें, असेसमेंट कराएं, ऑफिस आए।
1: जी अच्छा, जैसे जब कोर्स कर रहे हैं उस 2 साल में कोई कुछ नहीं करना, कोई इंटरेस्ट नहीं है, फिर उसके 6 महीने और मिल जाते हैं, राइट?
0: बिल्कुल जी, ग्रेस पीरियड। हाँ जी
1: ठीक है। अच्छा, इसमें कोर्सेज ऑनलाइन ही है सारे के पर्सनल क्लास लगानी पड़ती है?
0: क्लाइंट्स को पसंद है ऑनलाइन कोर्सेज तो 2 से 3 घंटे वो क्लास लगाते हैं, हमारे इतने अंकल आंटी हैं हाउस वाइफ है क्लाइंट्स, राइट, अब इस उम्र में उनको हम कहाँ बैग पैक पहन के कॉलेज भेजेंगे, आसान से कोर्स है, एग्जामिनेशन है नहीं, आसान से असाइनमेंट है, अटेंडेंस लगाइए, फंडिंग हासिल कीजिए, कहीं भी खर्च करिए।
1: अच्छा, मैक्स एज कितनी है इसमें अप्लाई करने की?
0: हमारे क्लाइंट थे, आप मानोगे 72 ईयर्स के थे, वो भी उनकी फर्स्ट इंस्टॉलमेंट रिलीज होगी थी, सेकेंड में वो चली वैसे, तो अभी हमने उनका डेथ सर्टिफिकेट लगा के उनकी एप्लीकेशन रोकी है सेकेंड इंस्टॉलमेंट के लिए, राइट, तो मतलब एज लिमिट मैटर नहीं करती इसके अंदर।
1: अच्छा, जो ये मनी आती है ना, लोन आता है, तो ये आपके पास आएगा पहले, फिर आप दोगे लोगों को जो अप्लाई जो एलिजिबल है के, सीधा उनके अकाउंट में जाता?
0: आपने आज लाइक रजिस्टर करा, आप गवर्नमेंट आपको ईमेल भेजती है, आपके ईमेल पे अपना बैंक को सेटअप करते हैं अंदर, और फिर गवर्नमेंट आपके खाते में 30 से 90 डेज में फंडिंग भेज देती है, हम बीच में नहीं है फाइनेंसिंग में, अब हम आपको कोर्स ज्वाइन कराते हैं, आप स्किल हासिल करते हैं, फंडिंग अपने अकाउंट में हासिल करते हैं, 8 साल में हजारों बंदे लहा लह चुके ने, तो उसी पीछे ना रहो।
1: अच्छा, अपना एड्रेस बता दें और साथ के साथ फोन नंबर बता दें। अच्छा, पहले ना सराश मुझे ये भी बताएं, क्योंकि कल ना कॉल आ गई थी मुझे बाद में, तो फिर आप भी बिजी थे है ना, बात अपनी हुई नहीं है, वो कहते हैं मैंने अप्लाई किया हुआ, मेरे को तो कोई जवाब ही नहीं आया, ऐसे भी हैं कोई हमारे लिसनर जिनके साथ ऐसे हुआ हो, भी अभी तक कुछ हुआ नहीं, ज्यादा टाइम लग गया, या क्या रीजन हो सकता?
0: 2 से 3 महीने तो लगते ही हैं।
1: अच्छा,
0: 30 से 90 डेज, कोई अगर आज अप्लाई करेगा कल नहीं मिलेगा उसको, तो इतनी पेशेंस आपने होनी चाहिए कि 30 से 90 डेज आपको आराम से बैठना है, गवर्नमेंट पे सिर्फ आपकी फाइल नहीं है, हजारों फाइलें हैं।
1: ठीक है, बस फिर वही है, वो पता क्या था, मुझे लगता है 1-1.5 महीना हुआ, कहते मेरे को तो कोई जवाब ही नहीं आया मैंने कहा आपको उनका एड्रेस पता, आपको उनका फोन नंबर पता, आप कॉल करें, ऑफिस जाएं, कोई ऐसे तो है नहीं है भी, पता नहीं कुछ कहां, खबर ही नहीं है,
0: जल्दबाजी हम पहले बोल के चलते हैं, हमारी फीस भी 199 है काम होने के बाद, शुरू में कुछ भी नहीं है, तो मतलब उनकी जेब से कुछ गया नहीं, अभी तकलीफ में पढ़ाई कर रहे हैं वो, मतलब अगर वो पीछे हटेंगे तो कॉलेज और हमारा नुकसान है, उनका नहीं, हमने फाइल में टाइम स्पेंड करा, कॉलेज ने 2 महीने फ्री में पढ़ाया उनको, तो उन्हीं का फायदा, उनकी जेब से कुछ निकला, अगर वो पीछे भी हटते हैं तो।
1: चलो नंबर दे दें,
0: हमारा एड्रेस है 218 एक्सपर्ट बुलेवर्ड हर एंटरी डेरी पे, और नंबर हमारा है 437-234-3175, 437

0: 254-3175 कॉल करो, एस्टिमेट लो 437-254-3175 437-264-3175 हुणे हुणे हुणे कॉल करो 437-254-3175
1: जी। थैंक यू सरांश, थैंक यू वेरी मच। ते लो जी मैं भी नंबर दे दिंदी एक बार सरांश नूं, तुसीं कॉल कर लो 437-264-3175 437-264-3175 ते तुसीं गल बात कर सकदे हो।
2: भाई ये ट्रक तां हुण मैं चंगी तरह चलाउण लग पिया, हुण सोचदा वी कोई यूज ट्रक ही लै लवां, पर समझ नहीं आउंदी वी कित्थों लवां।
3: ओ इहदे च सोचण वाली कीड़ी गल आ, ईगल ट्रक सेल्स वाले बिल सेखू नूं कॉल कर, ओए ओहदे तों वधिया कोई नहीं।
4: जी हाँ, जे तुहानू यूज ट्रक दी लोड है तो तुहाडी पसंद दा मेक एंड मॉडल दा ट्रक तुसी एना तो लै सकदे हो। अपना ट्रक वेचण लई भी याद रखो ईगल ट्रक सेल 17 स्ट्रेटन एवेन्यू ब्रैम्पटन। कॉल विल सेखो 416-819-6000।
5: रात में छड़ दिनी आ, पर जनाब चले किथे हो?
6: मैं चले स्काईडम ऑटो एंड बॉडी सेंटर, जेडे कर देने मेरी कार दी केयर, बेस्ट सर्विस ते फुल रिपेयर।
5: ए ओई हन स्काईडम ग्रुप ऑफ कंपनीज, जेना दिया जीटीए दे विच चार लोकेशन ने, मेरी फ्रेंड अनु दी एक्सीडेंटल कार भी फिक्स करके नवी बनाती सी।
6: जी हां, कारा दे नाल नाल बसा अते वड्डे ट्रकां दी हर तरह दी रिपेयर अते बॉडी वर्क दा काम भी कीता जांदा है। रेट वास्ते बेस्ट पैकेज प्रोवाइड कीते जांदे ने। वधेरे जानकारी लई कॉल करो 905-874-18।

0: September 18, 7 PM at the Living Arts Center, Mississauga.
1: पहला आया सी बड़ी मोहब्बत दी थी, उम्मीद कर रहा हूँ इस बार भी तुसी आशीर्वाद दोगे।
2: वे आ जा तो मैं हाल नचिए, नचिए बाहर चुपाहा पा, वे आ जा तो मैं हाल नचिए।
0: For tickets, visit Ticketmaster. For information, call Singh Harjeet at 6474481000.

खूबसूरत गीत कैसियां ओ आवाज़ां एक बार फिर तो टोरंटो शहर दे विच वही तुहाडे वास्ते आ रहे साडे वड्डे वीर जी वड्डे भाजी साडे गवर्नमेंट इंडिया वालों जिन्हां नूं सन्मान प्यार दिता गया पद्म श्री अवार्ड दे नाल सन्मानिया गया जनाब हंस राज हंस तारीफ करा राती इश्क दी होई बरसात सारी रात भिजदे रहे ओ सानू नींद ना आई सारी रात भिजदे रहे इक्को वेले हुंदी बरसात वसलदियां घड़ियां नू हरजीत जी ना रोकिया गया नैन

0: समोसा एंड स्वीट फैक्ट्री जिथे पाजी दिया सारी आइटमां $4.75 पर पाउंड तो शुरू ने। बेसन पिस्ता रसगुल्ले और जस्ट $5 पर पाउंड। तुहाडे इन्ने सालां दे भरोसे अते विश्वास कारण असी लेके आए कस्टमर्स एप्रिसिएशन सेल 2026 100% कैनेडियन मेड टॉप क्वालिटी स्वीट्स हुण 3 लोकेशंस तो सर्व करदे ने। 2 इन ब्रैम्पटन 1850 एल्बम रोड इटोबिको। वधेरे जानकारी लिए कॉल करो 416-213-1115 ते 416-213-1165।
1: रोकी तू अपनी इंश्योरेंस किस तो करवांदा यार?
2: ओए कल्ला मैं नहीं, अपनी कम्युनिटी दा हर बंदा इंश्योरेंस एक्सपर्ट मोना मेंगी जी कोल करवांदे ने।
1: वाह यार, नंबर ता दई मोना जी दा।
2: हां जी, तुसी भी नोट करो, इंश्योरेंस कोई भी होवे,
3: इंश्योरेंस फॉर यू दी मोना मेंगी जी।
2: जेडे लाइफ इंश्योरेंस, क्रिटिकल इलनेस इंश्योरेंस, सुपर वीजा इंश्योरेंस अते हर तरह दी इंश्योरेंस दे लई भरोसेमंद नाम है। हुणे कॉल करो 416-509-1509 ते।
3: याद रखो, मोना मेंगी फ्रॉम इंश्योरेंस फॉर यू
2: 416-509-1509
3: और विजिट insuranceforyou.ca।
4: Kataria Tours and Travels located near 2883 Derry Road, East Upper Airport and Derry, the intersection upper. To see cheap flight tickets, si pal de vecho, Toronto to Delhi, Delhi to Amritsar, the route options sono chahide ne. Jan to see visa services, si pal de vecho, puri family vacation upper jaan di soch ne, jithe tuhanu all inclusive vacation packages bhi milde ne. Pahunchna maji Kataria Tours and Travels, Airport and Derry, the intersection upper. Call kar sakde ho 905-678-1200. 905-678-1200 Kataria Tours and Travels, Airport and Derry, the intersection of Earth.
5: The wait is finally over. Gordy Kuman of Remax Gold Realty proudly presents another golden opportunity to own premium retail and office space in South Caledon. Introducing Caledon Commercial Center, a new 15-acre commercial development located at the prime intersection of Highway 10 and Highway 410. Retail and office units are now available for sale. Secure your space in Caledon's next commercial destination. Contact our team at Remax Gold Realty to book your unit today.
6: अगर अगर आपका कार एक्सीडेंट हो गया और आप कानूनी मदद लेना चाहते हैं तो ना सिर्फ हम आपके हक का जायज ज्यादा से ज्यादा पैसा लेकर दिलवाते हैं बल्कि अपनी फीस भी आपका क्लेम दिलवाने की बात ही लेते हैं। और मैं आपकी अपनी अंजुम कुरैशी आपकी अपनी जबान बोलती हूँ और हमारे पर्सनल इंजरी लॉयर्स की टीम आपके क्लेम को प्रोफेशनली हैंडल करते हैं। और अगर अपने क्लेम के सिलसिले में आप हमारे लॉयर के साथ मीटिंग करना चाहते हैं तो हमारी कंसल्टेंसी बिल्कुल फ्री है। आज ही मुझे कॉल करें, आपके कार एक्सीडेंट केस में आपका इन्फॉर्मेशन लेना आपका हक है। 416-570-0157 416-570-0157।

है। अरे तो लो भैया, हम अपने पैरों के ऊपर खड़े हो गए और मिला ली है ताल, दबा लेगा दांतों तले उंगलियां लिया, ये जहां देख कर अपनी चाल। धन्यवाद के पग घुंघरू।